योषा गणेन वरदध्नि विमथ्यमाने घोषालयेषु दधिमन्थन तीव्र घोषा रोषात् कलिम् विदधते कगुभश्च कुम्भा।